0: गिलास तुम कुफा भी
1: रंडेशा का हरे ना अम्तान जरें दिया एफ मिया विची मिया अंबिव्ट मिया रें इरां जोत तुझो फंदा तुझा मिश क्रीज फा फिरेने ना तेल माना ना तुम ने रंजो तुझो रूसी ऑस्ट्रेलिया और मादागास्कर ना उन मादागास्कर अंत फिट संभव करा जाता नो सच्ची अंबुला सिंफानी चकी चुआ निउलु ना एटु आराची फानी चकी चुनु ला एटु दिया रावत तेरक ले फुम्बा फ्शेने ना ट्रम्ज़े सच्ची ना दिस माफ़ा पुए जन फ़ाम पिनारा ना ना तोते तुआ दिया बामाना ना उल्ला याने जेन जासे मिशन जासे आसानी इलाने जन फ़ाम रूना ना ड्रोबा आज़ा उन जासे म्येच आरी म्याट्च अफ़ुम माइरवे कं फ़ासेरा जेन फ़ासेरा ना ना जन जनुए तुम याचाप्ची क्या मज़े फ़तों जाए फ़ा माना ना अरे तो पेलता ना चिक फ़िल फ़िल जासे ना पिनार ने जो तुम जो रूआ नू इपेचा निवा वंती फ़िरनेंती फ़ासे चिरेशा कातू करें जाए चिरेशा कातू करें जाए Fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa mbeny teny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho andrainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.